तेरी डोली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंसके विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले काल के रट की

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Hey my friends, Ricky Ramlagan here, inviting you to join me on the musical journey to the Midnight Hour, every Tuesday to Friday from 4 to midnight. Your Sundar Sapna on Radio Jagriti, 102.7 FM, where I bring you the passion of beautiful, breathtaking, specially selected music and the warmth of great company. The music you know, the music you love, the music you want to listen to on your Sundar Sapna. Your enchanted journey to beautiful dreams.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: One place, countless options. That's Fabinia Expo in Chuguanas. Bridal and groom's wear, jewelry, furniture, footwear, home deco, and so much more. Opening daily 11 AM to 9 PM.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: Sitaram, I'm Alicia, inviting you to join me Monday to Friday, 7 a.m. to 10 a.m. for the program Subah, starting you on an inspirational note and taking you through a musical journey as we keep each other company, only on Radio Jagriti, 102.7 FM. Sitaram.
2: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज, आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम, वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

ज्ञानमुचेतु दुत्तिश्च जगज्योतिर् अंतर अमृतम प्रजासु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम हरिं परमानंदम।

नमः टू दैट लॉर्ड जो पुराण पुरुषोत्तम है और प्रसन्न और प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं जो माया के स्वामी है तथा जिनका स्वरूप दुर्विभाव अचिंत्य है उन मायुरेश्वर गणेश जो की मैं प्रणाम करता हूँ। We pray again and again, पुनः पुनः

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: One place, countless options. That's Fabinia Expo in Chuguanas. Bridal and groom's wear, jewelry, furniture, footwear, home deco, and so much more. Opening daily 11 a.m. to 9 p.m.

लक्ष्मी करोतु कल्याणम् आरोग्यम सुखसंपदाम् मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।

आद्यम अर्घ्यम आचमन स्नान ओम उष्णोरकम निर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम पार प्रक्षालनाथाय दत्तम दीप्तिहृदाम अर्घ्यम गृहान निवेश गंध पुष्पाक्षदेशाय करुणाम कुरु मेरे अर्घ्यम गृहान मूषदे सर्वतीर्थ समायुतम सुगंधि निर्मलम जलम आचमनम यादिवम गणपति गणेश भगवान पूजम पाद्यम अर्घ्यम।